यहाँको लाख ढेपा ल ल्याएको घोषणा यहाँको दु जिल्ला या चुलाचुली गाउँपालिका पालिका निङ्याको लाख माई नगरपालिका छिगु लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मुङ्कीगु को छिगुदु अध्ययन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष लक्षिया पारिश्रमिक लल ह्यागु कोषिना दिगुदु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व बङ्गलादेश विदेश मन्त्री डाक्टर खलिलुर रहमान दथिम हिग टेलिफोन सल जुगुदु थोएलस्ता परराष्ट्र मन्त्री खनाल खुसी बा आक्रान्त नेपाल या त मजी मगागु ग्वालियागु बच पोङ्कगु बङ्गलादेश सरकार या त शुभ्या देशना दिगु दुछ वैक्लङ खुसी बास उद्धार राहत ग्वालिया विशेष नेपाल बङ्गलादेश नापा लिक या समन्वय लिङ्का तेगु ध्या दिगुदु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व दक्षिण कोरिया या विदेश मन्त्री चो ह्युन दथिम हिग टेलिफोने खलाबला जुगुदु थो लसत्या दक्षिण कोरिया या विदेश मन्त्री चो ह्युन विपत्या हुने सीमा व लिचोलापी नेपाली मनुते गा वङ्क दुःख पङ्का दिसेन थो हाठ्या जागु नेपाल व नेपाली जनता या त दक्षिण कोरिया एकबद्धता पङ्केगु बचम बिहादिगुदु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपविदेश मन्त्री एलिसन हुकर दति टेलिफोने खलाबला जुगुदु वेक्लम विपद्या थो हाठ्या जागु इले नेपाल या त गुहाली आगु अमेरिकी सरकार या प्रतिबद्धता पङ्का दिसे नेपाली जनता व नेपाल सरकार या त एकबद्धता ललहागुदु सूचना तथा संचार मन्त्रालय रसुवा नुवाकोट धादिङ नापाया लागे आ वङ्गु प्राकृतिक विपत्या झाँका नापा स्वापुदुगु मानवीय कथ संवेदनशील किपा श्रव्य दृश्य अपुष्ट सूचना पिथने ताव प्रसारण माया त स्वापुदुगु संचार माध्यम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नापा इनाप यागुदु मन्त्रालय विपत्या हाठ्या जागु थोइले संचार माध्यम सकल मनुतेगु पाखे प्रभाव जुइगु सूचना उद्धार राहत हो जनमानस महत जागु थो इले बामलागु लिचो लाइगु व संवेदनशील कथन सूचना सम्प्रेषण या त इनाफियागु ख मन्त्रालय सहसचिव नापा प्रवक्ता उदय बहादुर राणा मगन पिथना दिगु विज्ञप्ति सम् विपतन जागु थो इले क्षति उद्धार हो राहत नापाया समाचार सूचना प्रकाशन व प्रसारण याबले गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा निकाय स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति थे जागु आधिकारिक निकायसँग जक सूचना कया लल ह्या त इनाफियागु दु थौ डे न्यङ्क ऋषि तर्पणी नव यज्ञ पवित जनै नापा रक्षाबन्धन धारण याना थौ जनै पूर्णि हनाचङ्गुदु पूर्णिमाया दिन सुत तेल निसिम वैदिक सनातन धर्मावलम्बी तेसँग खुसी ताल व पुखली वना मोल हुया गुरु पुरोहित रक्षा सूत्र चिगु चलन्दु थौ हे नेपाया तराई लाग्या धासा थौ या दि तता के पिसा दाजु किजा पिन्ता राखी चिना थो नखा अनि थुगुसी तता के व दाजु किजा दथि थौ या मतिना व स्वापु उपमान्तका सामाजिक मान्यता नापा लल हाना चङ्गुदु थो नखा या परम्परा पहाडी लागान बोलाना चङ्गुदु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँग भोटे कोसी खुसी वगु खुसी बासन जुगु जनधन क्षति या त कया दुःख पङ्कुसी उधारो राहत या नीति सक्रिय जुया निजी लागा या त इनाप्यागुदु महासङ्घ या अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ मिग पितादिगु महासङ्घ या जिल्ला व नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुको सङ्घ उद्योगी व्यवसाय या त स्थानीय प्रशासनमा समन्वयना परिचालित जुइता इनाप्यागु ख नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासँग भोटेकोसी खुसीबा स यातायात लाग्या जुगु क्षेत्रीय अध्ययन यात समिति निसङ्गुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ भोटेकोसी खुसीसँग वगु खुसीबा हुने देशे तदङ जनधन्य क्षति जु साना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी तेगु सक्रियता हुने विद्युत सेवा नियमितता तालागु ध्या दिगुदु आदेश पिन्या बुख इरान होर्मुस जल मार्ग हान च्याकेगु नीति थगु सर्तेगु सूची देखा चङ्गुदु इरानिया सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसेन रेजाइया कथा मध्यस्थ देतेगु इनार पिपा तेह्रा नापातो शर्त देखा चुङ्गु ख रेजाइ जलमार्ग च्याकेन अमेरिका इरान नापा यागु माग पुङ केगु नपी व्यवहारिक पलायन याके मागु धागुदु आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश हिमाली लगाया छुन थासे व लुम्बिनी कर्णाली व सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली लगाया मोह थासे मलानापा लाप्सा तोया भतिचा तस्कौ वा वैगु चपुखुवा वैगु सम्भावना दु कोशी बागमती प्रदेश पहाडी लगाया यो गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लगाया छुन थासे कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी लगाया मोह थासे मध्य प्रदेश व कोशी प्रदेश तराई लगाया यको थासे बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लगाया मोह थासे मलनापा लाप्सा तोया भतिसा तस्कौ वाबुको सम्भावना कुबिगु दुसा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश पहाडी लगाया कोशी प्रदेश तराई लगाया व मध्य प्रदेश छगुनीगु थासे आप्लान तस्कौ वाबुको सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे घौस
या क्वाज सुई छगु निसे निगु सुई छगु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस जति क्वाज लुयाउल दासा थाउन हिने यहाँ सोनिका क्वाज सुईगु निसे सुई निगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु दुकुमा दु रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस शुभ

0: छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रेढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ भोटे कोसिरी दोषी क्युई लेबा मुला लेदो छ्याम क्युई लेबा लिछा राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तेन व्यवस्थापन प्राधिकरण से गान्धी थुम्री चिबा कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला प्राधिकरण से तिनी कागुर छिपान भोटे कोसिरी दोषी भाल खाबारी खामला बिबान भोटे कोसी थेन त्रिशुलिरी उद्धार थेन राहत पिनबा गे लाबा कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा खिन्ला प्राधिकरण लासुङबोन शान्ति महत्से जोखिम थुम्री मुबा मोकोन्दा सतर्क ताबन सुरक्षित घ्लारी निबारी मोइजेन लासुबा मुला राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण थेन व्यवस्थापन प्राधिकरण चे रसुवा जोङ ला भोटे कोसी घान्धिरी खाबा भाल्डी परप्तासी सिबा मी चु सानग्युर सोबा धुई धोना ग्यार्जा घाँसे मेन्दो सोम्ची भ्रे छोबा मुला प्राधिकरण से हुल्ला लानन जोङरी दान्दे धोना ग्यार्जा घाँसे मेन्दो सोम्ची भ्रे मी सिबा मुला शिवा लुहिरो स्याप्पा मुला बिसी पाङबा मुला प्रहरी थिएन गेदिम नक्सा लान्सार रसुवारी मेन्दो चुइनी धादिङरी मेन्दो सोम्चुई सोम तनहुरी मेन्दो निचुई ब्रे नुवाकोटरी मेन्दो सोम्चुई निस गोर्खारी मेन्दो ब्लिचुई डु चितवन्डी ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निचुई गिक नवल परासिरी ग्यार्जा गिक्से मेन्दो सोम्ची थेन नबल परासी नुप्री मेन्दो निचुई निस्ला शिवा लुहिरो स्याप्पा मुला नेपाल प्रहरी लासुङबोन थेन डिआइजी अभिनारायण काफले से सुङबा अनुसार भाल प्रभावित थुमग्याम तोङगिक ग्याजा घाँसे मेन्दो ब्लिचुई घाँदा उद्धार लाबा मुला प्राधिकरण लासुङबोन शान्ति महचे दान्दे धोना भाल्री परप्तासी माबा मी ग्याजा कुसे मेन्दो निचुई निस मुला बिसी सुङबा मुला माबा कादेरी नेपाल प्रहरीला मेन्दो निचुई ब्रे नेपाली सेनाला मेन्दो ब्लिचुई घा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालला मेन्दो चुई सोम भन्सार गेदिमला मेन्दो चुई घा थेन अध्यागमन विभागला मेन्दो ब्ली मिनी माबा मुला चुराङ लासिन रसुवा जोङ ग्यामा ग्यार्जा गिक्से मेन्दो डुचुई गिक थेन नुवाकोट ग्यामा मेन्दो गिक मी माबा मुला चुराङ लासिन मकवानपुर ग्यामा मेन्दो डुचुई डु मी माबा मुला बिसाम फिर्क्या फ्युल्ला ग्यार्जा गा मेन्दो चुई निस मी माबा मुला फिर्क्या फ्युल्डी टिची नेपाल कोरबारी खाबा ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निचुई निस मी एनोन माबा मुला प्राधिकरण से पाङबा अनुसार भाल्दी परप्तासी मेन्दो निचुई सोम घाइते ताबा मुला रसुवा ग्याम ग्यार्जा घाँसे मेन्दो निचुई नि नुवाकोट ग्याम ग्यार्जा ब्रेसे मेन्दो कुचुई ब्रेथेन धादिङ ग्याम मेन्दो सोम दा उद्धार लाबा मुला दाते याम्बुला लोलो लोलो अस्पताल दि मेन्दो ब्रेचुई निस घाइतेला मान लाबान मुला बिची प्रहरी चे पाङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र सहाला लोनखाङसे रसुवा जोङला भोटे कोची थुम्री खाबा भाल्से प्रभावित ताबा युल्बादा राहत पिनबारी उद्धार लाबारी से मुबा मिका देथेन गेन्दुन्दा सरकारी संयन्त्र थेन ढिक्सी जेखेन गे लाबारी मोइजेन लासुबा मुला काइब्लोनला लोनखाङसे गाछान ताम आलाना जाजा जाजा निजी सवारी साधन च्याङना च्याङना जेखेन राहत बोर्सी प्रभावित थुम्री निवासे सडक घ्यालाम रि जाम तासी टिबा मुला बिसी पाङबा मुला सडक रि जाम तामा बिरामी पुइदोबा एम्बुलेन्स सरकारी उद्धार टोली थेन महत्वपूर्ण राहत पुइबा मोटर कादेदा तोदेबा ग्ला दोना दोबारी गाह्रो तासी टिबा मुला बिसी लोनखाङसे पाङबा मुला रसुवा जोङरी खाबा भाल ग्याम त्रिशुली थेन नारायणी गान्धीरी ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निस्तुई ब्रेला सिबा लुहिरो स्याप्पा मुला चु गान्धी कादेरी स्याप्पा सिबा लुहिरोदा भरतपुर अस्पताल दि साफा लासी फोटो किन्सी ट्र्याक छ्याम डेटा बढी ब्याग्री थान्छी लुइरोला व्यवस्थापन थेन पहिचान केन्द्री थान्बा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ चितोनला एसपी रामेश्वर पौडेलसे सुङबा अनुसार दान्दे धोना स्याप्पा शिवा लुहिरो कादेरी मेन्दो निश्चुई ब्ली जाजाको जामेकोला मेन्दो ब्लिचुई गिक जाकोला मेन्दो डु जाजाकोला थेन मेन्दो नि लैनोकोला मुला चुराङ लासिन मेन्दो घाँचुई घाला शिवा लुइरोला आङ्गा कादे स्याप्पा मुला तिलाई लुइरोला गान्धीरी मुचुलका ताबा गे लाबान मुला बिसी एसपी पौडेल से सुङबा मुला फोटो किनबा सिबा लुइरो ङोसेबारी डिस्प्ले लाबारी तिबा मुला राङला मिनिसे होजा डिस्प्ले रिच्यासी ङोसेबा गे लाबारी रो ताला बिसी एसपी पौडेल से सुङबा मुला चितवन क्यारला त्रिशुली थेन नारायणी किनारा री तिनीनोन सियो हेनसेन नेपाल प्रहरी नेपाली सेना थेन सशस्त्र प्रहरी से शिवा लुइरो माइबागे लाबान मुला ओजा थुम्ला मिनी कादेसे गान्धी किनारी शिवा लुइरो स्यापालिसा सुरक्षा निकाय दा पाङसिन खाबा मुला बिसी एसपी पौडेल से सुङबा मुला चुराङलासिन त्रिशुली थेन नारायणी गान्धी किनारी स्यापा ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निला शिवा लुइरो मोसेबादा पोखरा भोरबा मुला सरकार से काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङ ला मोकोन सदस्य कादेला लागिकला तलब ला टाङ्गा पिनबा निर्णय लाबा मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङ गेझाङरी तिनी चिबा ब्लोन सेङझाङ ला चिसाङ से चु निर्णय लाबा हिनला बिसी सरकार ला सुङबोन सस्मित पोखरेल से चुताम सुङबा हिनला चिसाङ से भारत थेन जी टु जी खरिद ग्याम तोङ निचुई ब्ली मेट्रिक टन जीएपी सार ग्लुबारी सानाम सामग्री कम्पनी लिमिटेडला सैद्धान्तिक स्वीकृति पिनबा नो निर्णय लाबा मुला चुराङलासिन सरकारी कर्मचारी कादेरी श्रेणी विहीनला निरा खरिदारला घारा नासुला घारा अधिकृत थेन रो लोनला निस्रा निस्राला थेन सह लोन लोन थेन ग्रेन लोनला चुई राला तलब विपद कोश्री पिनबा ताबा मुला चुराङलासिन रसुवाला भोटे कोशी गान्धीरी खाबा भाल ग्यामा प्रभावित मिनीला उद्धार मान लाबारी राहत थेन पुनर्स्थापनारी लोलो लोलो प्रदेश स्थानीय तह थेन घिन्दुन कादेशे रो पिनबा नोर रोला घोषणा लाबा मुला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कादेला घेन्दुन नेपाल इपान्से काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री करोड घाँसे लाख घाँचुई टाङ्गा रो लाबा निर्णय लाबा मुला गण्डकी प्रदेश सरकार से करोड ब्ली टोखा नगरपालिका से करोड घिक्से लाख निचुई चाङगु नारायण नगरपालिका से लाख घाँचुई से तोङ सोमचुई घा कैलाली ला धनगढीरी मोबा निसर्ग अस्पताल से लाख चुई घिक तोङ चुई घिक ग्याजा घिक्से सिका चुई घिक थेन इलाम ला गोर्नी पालिका से लाख सोमचुई घा रो लाबा घोषणा लाबा मुला चुराङलासिन रेड क्रस थेन रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी मोक्युल महासङ्घ आइएफआरसी से करोड चुई ब्रे लाख डुचुई कु तोङ निचुई टाङ्गा रो लाबा ताबा मुला विषम बिवाइडी सही मेक्स प्राली से करोड निसे टाङ्गा राहत पिनबा घोषणा लाबा मुला बिसामा मिनी कादे थेन लोलो लोलो गेन्दुन क्याम न ग्याम नोन राहत कोश्री टाङ्गा पिनबा गे लाबान मुला अमेरिकी हुलचोहो डोनाल्ड ट्रम्प से नेपाल दा खाम्दे रो लाबा ताम सुङबा मुला अमेरिकी समाचार घेन्दुन एनबीसी सानगुरु से तिलमा व्हाइट हाउस री सेङबा लेक ओरान्टी योला मिन पोबा ताम्री कार्यकारी आदेश रि छाहिक लाबारी सेङबा ह्वाल दिछा सानगुर बोन कादे थेन लेङमो लासिबान युलचोहो ट्रम्प से चुताम सुङबा हिनला युलचोहो ट्रम्प से भोटे कोची भाल ग्याम ताबा छेतीला ताम्री नेपाल ला आधिकारिक मिनी कादे थेन ताम लाबा लिछा नेपाल दा रो लाबारी अमेरिका तयार मुला बिसी सुङबा मुला चुराङ लासिन रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल थेन अस्ट्रेलिया ला रोङसा ब्लोन पेनी बङ घुङरी तिनी अस्ट्रेलिया टेलिफोन डी ताम ताबा मुला रसुवा नुवाकोट ला छ्याम स्यान्दो थुम्री खाबा भाल ग्याम ओने ग्रेन छेती ताबा लिछा प्रभावित थुम्री उद्धार थेन राहत गे लाबान लाबा धुरी ताम ताबा हिनला ताम ताबा धुरी ब्लोन भङसे विपद से ताबा छेतिरी अस्ट्रेलिया सरकार ह्वाना ग्याम दुङ्गाल मानबान नेपाल दा ताबा चु दुङ्गाल ला धुरी खाम्दे धोना तोबा रो लाबारी अस्ट्रेलिया सरकार तयार मुला बिसी सुङबा मुला भोटे कोशी भाल लिछा सम्पर्करी आखाबा सुदूर नुप्ला प्रदेशला मेन्दो चुइगी कमिनी सकुशल स्याप्पा मुला सुदूर नु प्रदेश प्रहरी गेजाङला एसएसपी पदम विष्ट से सुङ अनुसार तिनी सम्पर्करी खाबा कादेरी कञ्चनपुर ला कु डडेल धुराला गिक थेन कैलालीला मेन्दो गिक सम्पर्करी खाबा मुला भोटे कोशीरी बालसे लामा दादे तोना सुदूर नु प्रदेशला ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निचुई गिक मिनी सम्पर्करी खाबारी खाम्बा आरे रसुवाला जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ नाङरी भाल्से लामा फस्तीबा मिनी कादेला नेपाली सेना से उद्धार लाबा गे लाबानमुला जोखिमला धुरी सेनाला उद्धार टोलीसे तिनी सियो हेनसेन सुरुङ नाङरी माइबा गे लाबानमुला सेना से तिनी सुरुङ ग्यामा मेन्दो निला सोमोन तेबा मुला सुरुङ नाङरी दाते नोन कादे मिनी फस्तीबा मुला बिबा पाङबारी आखाम खाम्बा दुई आरे बिसी सेना से पाङबा मुला धुन्छेरी अलपत्र ताबा कारेदा माइवान उद्धार लासी दिम पुइबा घे तिबा मुला ओने बुधबार भोटे कोसिरी खाबा भाल्से लोलो लोलो जोङला मिनी कादे धुन्छेरी अलपत्र ताबा मुबा अन्योल्डी ताबा कादेदा माइसी बागमती प्रदेश सरकारसे थेनी कादेदा राङराङला जोङरी क्यार पुइबा घे तिबा खिन्ला भोटेकोसी गान्धीरी खाबा ग्रेन भाल्थेन धुइसे युल्ला लानन राजमार्गथेन सडक घ्यालाम कादे नोङबा मुला प्रहरी थेन गेदिमला अनसार पृथ्वी राजमार्गला मुगलिन गल्ची मुगलिन नारायणघाट मेची राजमार्ग रुकुम नुप्ला भेरी करिडोर पासाङ लामुथेन रोल्पा ला सहित मार्ग नोङबा मुला पृथ्वी राजमार्गला गल्छी बैरेनी ग्याम तिलमाङ यासे हेन्से तिलो गिक्से मोटर सेङबा मुला चुराङ लाचिन जरी खेत थुम्ला घ्याम्री मुबा युङबा थेन साप्रा भ्याङबा लिचा मोटर कादे सेङबारी तिबा मुला बिसी सडक विभागला सुङबोन सुबराज न्यौपानेसे सुङबा मुला ओर्से रसुवा जोङला ग्रेन राजमार्ग कादेरी अर्को सूचना आँखादे धोना मोटर कादे सेङबारी आपिनबा ताबा मुला चुर्से नुवाकोट जोङरी नोन भाल्थेन ढुइसे लाबारी खाम्बा जोखिमदा च्यासी शिवपुरी गाउँपालिका ब्रे घट्टा स्योङरी मुबा टोखा छहरे सडक ग्यालम री मुन्ला धुरी मोटर सेङबारी आपिनबा ताबा मुला चुराङलासिन धादिङ जोङला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका चुई ज्वाङ स्योङ थुम्ला पृथ्वी राजमार्ग नोङबा मुला बिसाम मुगलिन नारायणघाट सडक घ्यालम भाल्थेन धुइसे नोङबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला नेपाल प्रहरीला अनुसार रसुवारी खाबा भाल्से नोङना लाबा धादिङला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका चुई ज्याङ स्योङला लेदो साप्रा भ्याङबानमुला चुराङ लासिन धादिङला गजुरी गाउँपालिका दुई जहरे खेत थेन बाङ्गे मोड सलग ग्यालाम एनोन नोङबा मुला गल्छी गाउँपालिका डु बैरेरी नोन लेदो थेन साप्रा भ्याङबागे लाबानमुला दिङे दाङसे साउन शुक्ला ह्याला कुनु तिनी धार्मिक थिएन रिमठिम महत्व पुइबा प्रिबा रक्षाबन्धन युल नाङरी धाङबानमुला तिनी हिन्दू धर्म तेन्बाका देशे गान्धी ग्योई वादी कदेरी लुई क्रुची पुरोहित ग्याम जनै थिएन डोरो क्वानबा रिमठिम मुला ग्यागर थुम्री तिनीलान कुनु नाना आँगासे ज्यो ज्यो आलेदा यारी राखी क्वानबा रिमठिम नोन मुला स्यान्स्युबान मुबा सानग्युर जिन्जे फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

0: यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झाचा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाके दिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहल जनपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व देशभरि मनाएल जाइत अछि। आजुक दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नदी आ पोखरिमे स्नान कऽ गुरुसँ मन्त्र लेने नया यज्ञोपवीत तथा रक्षासूत्र धारण करबाक प्रचलन अछि। एहि दिन दीदी बहिन भाइ भैयाके हाथमे राखी बान्हके सेहो चलन रहल अछि। सरकार प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके सब सदस्यके एक महिनाके तलब पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमे जमा करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमे आइ बैसल मन्त्री परिषदक बैठकसँ ई निर्णय कयलक अछि। एहिसँ पहिने बैठक गत बुध दिन नेपाल चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटे कोशी नदी तथा निचका तटीय क्षेत्रमे आयल बाढ़सँ प्रभावित जिल्लामे क्षति पहुँचल व्यक्ति व्यावसायिक संस्थाके लेल सहुलियत तथा पुनर्स्थापनाके पैकेज तैयार करबाक लेल अर्थ मन्त्रालयके निर्देशन देबाक निर्णय कयलक अछि। बैठकसँ भारत सङ्घ G2G खरीद माध्यमसँ 25,000 मेट्रिक टन DAP खाद खरीद करबाक लेल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडके सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल आ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेन वांग बीच आई टेलीफोन वार्ता भेल अछि। रसुआ नुआकोट लगायत क्षेत्र में आयल विनाशकारी बाढ़ से बुध दिन अधिक जनधन के क्षति भेलाक बाद प्रभावित क्षेत्र में खोज उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहल समय ई टेलीफोन वार्ता भेल अछि। वार्ता के क्रम में मंत्री वांग विपद के कारण भेल मानवीय क्षतिप्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार के दिस से दुख व्यक्त करैत नेपाल में पड़ल कठिन परिस्थिति में आवश्यक सब संभव सहयोग करबाक ऑस्ट्रेलिया सरकार तैयार रहल बतौलनि। परराष्ट्र मंत्री खनाल मंत्री वांग मार्फत ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा ओतुका जनता व्यक्त केने ऐक्यबद्धता आ सहयोग के लेल आभार व्यक्त कयलनि। ओ विशेष कर संकट के घड़ी में ऑस्ट्रेलिया देखौने सद्भाव आ सहयोग प्रति धन्यवाद देलनि। मंत्री खनाल विपद से प्रभावित नागरिक के खोज उद्धार तथा राहत के लेल नेपाल सरकार उपलब्ध सब स्रोत साधन परिचालन कर रहल जानकारी करौलनि। नेपाल प्रहरी आई 3 बजे धरि 547 गोटे के शव भेटल जानकारी दलक अछि। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय के हिसाबे रजुआ में 13 गोटे, धादिंग में 40 गोटे, गोरखा में 44 गोटे, नवलपरासी पूर्व में 134 गोटे, नुआकोट में 37 गोटे, चितवन में 221 गोटे, तनहू में 29 गोटे आ नवलपरासी पश्चिम में 28 गोटा के शव भेटल अछि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खोज तथा उद्धार के कार्य के लेल 4,473 गोटे प्रहरी परिचालन कयल गेल अछि। अखन धरि संपर्क विहीन रहल 28 प्रहरी कर्मचारी मध्य एक प्रहरी मृत भेटल अछि। घायल तथा उद्धार कयल गेल संख्या 1,473 रहल अछि। काठमांडू पत्रिका के विभिन्न अस्पताल समय उपचारत तथा डिस्चार्ज भेल व्यक्ति के संख्या 94 रहल अछि। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल में बहुत दिन भेल भीषण भूस्खलन के कारण भेल विपत्ति प्रति संवेदना संदेश पठौलनि अछि। आइ ओ अपन नेपाली समकक्षी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के ई संदेश पठौने एतय स्थित रहल चीनिया दूतावास जनौलक अछि। प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में 36 घंटा के अवधि में 1,91 करोड़ से अधिक सहयोग रकम संकलन भेल अछि। अर्थ मंत्रालय के प्राप्त विवरण हिसाबे बुध दिन से बृहस्पति के रात 12 बजे धरि कोष में रकम जमा भेल अछि। विभिन्न 10 वाणिज्य बैंक समय रहल खाता में 1,91,86,50,911 दाता सब 36 घंटा अवधि में ई जमा कयलनि अछि। बुध दिन भिनसर नेपाल चीन सीमा भऽ कऽ बह वला भोटे गछी नदी में भीषण बाढ़ अयला सँ अधिक जनधन के क्षति कयलाक बाद सरकार मंत्री परिषद बैठक बैस एक प्रभावित क्षेत्र के संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कयने छल। ओहि पश्चात राहत कोष में मनकारी व्यक्ति तथा संस्था सब के सहयोग जमा होबय के शुरू भेल छल। सरकार प्रधानमंत्री राहत कोष में रकम जमा करबाक लेल एहि के समन्वय के लेल अर्थ मंत्रालय के फोकल मंत्रालय के रूप में तोकने अछि। भोटे कसी नदी में आयल बाढ़ के कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 200 से अधिक कर्मचारी संपर्क विहीन रहल अछि। चिली में जल विद्युत आयोजना में 15-20 गोटे, रसुआगढ़ी में 100 गोटे से अधिक 3A पावर हाउस के 40-45 गोटे कर्मचारी संपर्क में नहीं आयल प्राधिकरण के निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ बतौलनि। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ के हिसाबे जल विद्युत आयोजना के सुरंग मार्ग में बनहाल कर्मचारी तथा मजदूर की अवस्था अज्ञात रहल अछि। टनल में जाय के अवस्था नहीं अछि आ जाय वाला स्थान कोन ठाम की अछि ई निश्चित नहि अछि। एक्सावेटर सँ पहिले थाल हटाबक संभव नहि अछि। भूर कक ऑक्सीजन आपूर्ति करबाक प्रयास कयल गेल अछि। नेवी पुरा के उच्च स्तरीय टोली सुरक्षा निकाय संग समन्वय में अपन कर्मचारी आ सर्वसाधारण के खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रखने अछि। हवाई उद्धार के लेल हेलीकॉप्टर पठाब रहल छी। गूगल मैप जारी कयल गेल अछि। बाढ़ पुनः आबि सकबाक कारणे सर्वसाधारण आ उद्धार में खटल गेल साथी सब के सतर्क रहबाक लेल अनुरोध सेहो कयलनि अछि। भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ से प्रभावित रसुआ नुआकोट और धादिंग जिला के दूरसंचार सेवा पुनः संचालन करबाक लेल नेपाल टेलीकॉम प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरण परिचालन के तीव्रता देने अछि। बाढ़िक कारण प्रभावित भेल तीन जिला में 120 साइट मध्य अखन धरि 80 के सेवा पुनः संचालन में आयल नेपाल टेलीकॉम जनौलक अछि। टेलीकॉम के प्रवक्ता डॉक्टर कमल लामी छाने के हिसाबे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अवरुद्ध मोबाइल सेवा तत्काल संचालन में आना हेलीकॉप्टर के प्रयोग का प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक उपकरण परिचालन कयल गेल अछि। भादो 11 गते हेलीकॉप्टर मार्फत कर्मचारी परिचालन का गोसाईकुट गांव पालिका 6 स्थित रसुआ सदर मुकाम के धुंचे के मोबाइल स्टेशन संचालन में आनल गेल वो बतौलन। आइ भिनसरे से नेपाल टेलीकॉम के प्राविधिक कर्मचारी रसुआ नुआकोट धादिंग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेवा संचालन होबा बाकी रहल स्थान में खटल अछि। एहि के संगे संचालन में आब चुकल टावर के थौ भरोसगर बनाबा आवश्यक प्राविधिक काज सेहो भ रहल प्रवक्ता लामी छाने एहि के जानकारी देलनि। रसुआ ऊपर तिब्बत में ताल फूटल सूचना अयलाक बाद चितवन के नारायणी नदी तटीय क्षेत्र में बसवास करित आयल स्थानीय वासी के सुरक्षित स्थान में लो जाल जा रहा अछि। बुध दिन ताल फूट के आयल बड़का बाढ़ से अकल्पनीय जनधन के क्षति भेल छल। शुक्र दिन सेहो ताल फूटत से सूचना आयल लगले नदी किनार में रहल लोक सब के जाय के लेल रोक लगायल गेल आ सुरक्षित स्थान में रह के लेल अनुरोध कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख रामेश्वर पौडिल नारायणी के नदी के कात में व्यापार व्यवसाय कर आ नदी किनार में नहीं जाय लेल रोक लगाब के जानकारी दिलन। नारायणगढ़ के बाजार नजदीक नदी किनार में बाढ़ देखा गेल स्थानीय के शुक्र दिन 12:30 बजे से माइकिंग कक सुरक्षित स्थान में जाय के लेल अनुरोध कयल गेल बतौलन। नारायणगढ़ बाजार से दक्षिण दिश के शिवघाट मंगलपुर सरनपुर होइत मेघौली क्षेत्र धैर नदी किनार में नहीं जा लेल आ सुरक्षित स्थान में रह के लेल सूचना प्रवाह कयल गेल पौड़ेल बतौलन। चितवन आ लग पास मौसम बदली हवा के अवस्था रहल अछि। आकाश में कारी बादल लागल आ पानी पड़क संभावना भेलाक बाद थप नदी में बाढ़ आबि सकबाक अनुमान कयल गेला सँ सतर्क रहबाक लेल प्रशासन अनुरोध कयलक अछि। रसुआ के भोटे कोसी में बुध दिन आयल बाढ़ पश्चात संपर्क विहीन भेल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला के व्यक्ति संबंधी शुक्र दिन धैर 12 परिवार तथा परिवारजन के संपर्क में आयल अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता तथा वरिष्ठ परीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल के हिसाबे प्रदेश के विभिन्न जिला से रसुआ गेल व्यक्ति सब बाढ़ तथा भूस्खलन पश्चात संपर्क विहीन भेल जानकारी परिवारजन से प्राप्त भेल छल। प्रदेश भर शुक्र दिन धैर संपर्क विहीन भेल 99 मध्य किछ व्यक्ति उद्धार पश्चात संपर्क में आयल छथि त किछ परिवारजन संग प्रत्यक्ष संपर्क कयने अछि। संपर्क में आयल व्यक्ति के संख्या 12 रहल अछि त प्राप्त विवरण हिसाबे संपर्क विहीन के संख्या 87 रहल अछि। प्रहरी के हिसाबे संपर्क में आवे वाला सप्तरी बारा महतरी धौंसा सरलाही जिला के व्यक्ति सब रहल छथि। सप्तरी के कंचन रूप नगर पालिका वार्ड नंबर 8 निवासी सुरक्षाकर्मी अजय मरिक संपर्क में आबि चुकल छथि। एहिना बारा के कलैया उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 22 धोध टोल निवासी नागेश्वर राम के बेटा 23 सत्य प्रकाश राम बृहस्पति दिन भिनसरे परिवारजन संग संपर्क में आयल छथि। ओ स्वयं रसुआ में सुरक्षित रहल जानकारी करने छलथि। एहिना सरलाही के लालबंदी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 निवासी 42 ब्रज किशोर दास आ हुनक 35 पत्नी सुनीता दास सेहो बृहस्पति दिन परिवारजन के संपर्क में आयल। सूचना अधिकारी वरिष्ठ परीक्षक ढकाल के जानकारी दिलन। एहिना धौंसा के हंसपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 टिल्ही निवासी 70 दयावती देवी यादव हुनक 45 बेटा विजय कुमार यादव परिवारजन नीतीश कुमार यादव तथा रुदौली निवासी सबुरी पजियार के 53 बेटा सुरेश पजियार आ अफंत धनेश्वर पजियार सेहो सुरक्षित रहल जानकारी प्राप्त भेल बतौलन। ओ सब रसुआ के गोसाई कुंड दर्शन कर गेल बताएल गेल अछि। संपर्क में आयल व्यक्ति सब गोसाई कुंड पहुंचल आ स्वयं सकुशल रहल जानकारी करौने छथि। एहिना कसरलाही के लालबंदी निवासी ज्ञान बहादुर थिंग आ सुनली के श्यामलाल मुक्तान के उद्धार कर संपर्क मानल गेल प्रहरी जनौलक अछि। महतरी के जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 निवासी रघुवीर यादव के 22 बेटा राकेश कुमार यादव सेहो घुम रसुआ गेल छलेत आ ओ अपन बाबू के संपर्क में आयल प्रहरी जनौलक अछि। एना शुक्र दिन धरि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिला से संपर्क विहीन भेल सब के विवरण प्राप्त भेल अछि, जे मध्य बारा के 12, परसा के 11, सरलाही के 9, परसा के 10, रोहतट के 11 गोटे संपर्क विहीन रहल अछि। बारा के कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 स्थित लक्ष्मीनिया चौक में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 33 वर्षीय सुजीत पांडे के मृत्यु भेल अछि। भगवान से कलैया दिस आबि रहल मध्य प्रदेश 03028 पर 7196 नंबर के मोटरसाइकिल बृहस्पति दिन राति लगभग 10 बजे अनियंत्रित भ कऽ दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल पांडे के तत्काल उद्धार के उपचारक लेल प्रादेशिक अस्पताल कलैया लऽ गेल छल। ओतय सामान्य उपचार पश्चात थप उपचार के लेल बीरगंज स्थित बायोध अस्पताल पठायल गेल। पांडे के चिकित्सक राति 10:50 में मृत घोषणा कयने छल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल, नेपालको समावेशी आवाज।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से अब तक 579 लोगों की मौत की हुई है पुष्टि। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने का अर्थ मंत्रालय को सरकार का निर्देश। सड़क की आवश्यक मरम्मत के बाद रसुआ फिर सड़क नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में सहायता जारी। 36 घंटे में 1,91,00,00,000 रुपए से अधिक की राशि जुटी। और नॉर्वे के राजा हेराल्ड का 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। रसुआ में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 579 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार रसुआ में 13, नुआकोट में 38, धादिंग में 40, चितवन में 222, कोरखा में 47, तनहू में 31, नवलपरासी पूर्व में 134 और नवलपरासी पश्चिम में 28 शव मिले हैं। अब तक 1,473 लोगों का उद्धार किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान के लिए 4,473 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। काठमांडू घाटी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 97 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सरकार ने रसुआ की भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों और व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने का अर्थ मंत्रालय को निर्देश दिया है। मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक ने प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का 1 महीने का वेतन जमा करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मंत्री पोखरेल के अनुसार चीन सरकार से मिली जानकारी में सामान्य ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़ और मलबे के साथ पानी का बहाव बढ़ने की बात सामने आई है। उन्होंने जोखिम बढ़ने की स्थिति में लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। बैठक ने भारत से 25,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद G2G माध्यम से खरीदने के लिए कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। भोटे कोशी में आई बाढ़ के कारण टूटा रसुआ जिले का सड़क संपर्क फिर से बहाल हो गया है। सड़क विभाग के प्रवक्ता शिवराज न्यापाने के अनुसार काठमांडू टोखा छहरे गड़खार पुल अपर नरजा लच्चांग सरम थली पार्टी खर्क होते हुए बोगटी टार कालिकास्थान धुंचे सड़क मार्ग पर यातायात फिर शुरू हो गया है। सड़क की आवश्यक मरम्मत और अवरोध हटाने के बाद फिलहाल छोटे चार पहिया वाहनों के आवागमन की अनुमति दी गई है। सड़क को पूरी तरह सुगम बनाने का काम जारी है। सड़क खुलने से रसुआ में जरूरी सामान की आपूर्ति राहत और बचाव कार्यों में सुविधा होने की उम्मीद है। हालांकि सड़क के कुछ हिस्सों में अभी भी जोखिम बना हुआ है, इसलिए वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने नेपाल में बुधवार को हुए भीषण भूस्खलन से हुई और बाढ़ से हुई जनधन की क्षति पर संवेदना व्यक्त की है। चीनी दूतावास के अनुसार राष्ट्रपति शी ने आज अपने नेपाली समकक्ष राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को संवेदना संदेश भेजा। परराष्ट्र मंत्री शशि खनाल और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। मंत्री वोंग ने रसुआ में बाढ़ के बाद पैदा हुई कठिन परिस्थितियों में नेपाल को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार की तत्परता व्यक्त की। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने संकट की इस घड़ी में नेपाल के प्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार और मंत्री वोंग द्वारा दिखाई गई एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार प्रभावित लोगों की तलाश बचाव और राहत के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में 36 घंटे की अवधि में 1,91,00,00,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि जमा हुई है। अर्थ मंत्रालय को प्राप्त विवरण के अनुसार बुधवार दोपहर से गुरुवार रात 12 बजे तक कोष में उक्त राशि जमा की गई। विभिन्न 10 वाणिज्यिक बैंकों में मौजूद खातों में दाताओं ने 36 घंटे की अवधि में 1,91,46,50,911 रुपए जमा किए हैं। बुधवार सुबह नेपाल चीन सीमा से होकर बहने वाली भोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद राहत कोष में उदार व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा सहयोग राशि जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ। सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि जमा करने और इसके समन्वय के लिए अर्थ मंत्रालय को फोकल मंत्रालय के रूप में जिम्मेवारी दी है। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले संस्थागत क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सहयोग करने वाले दाताओं की राशि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह व्यक्तिगत रूप से नकद सहयोग करने वाले दाता मंत्रालय में आकर राशि प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही कोष में बची राशि बढ़कर 4,09,11,60,000 रुपए पहुंच गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने बाढ़ पीड़ितों के नाम पर अनधिकृत रूप से धन संग्रह न करने की अपील की है। भोटे कोशी बाढ़ प्रभावित लोगों के उद्धार, राहत और पुनर्वास के नाम पर कुछ व्यक्ति, समूह और संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से राशि जुटाए जाने की शिकायत के बाद सरकार ने संबंधित पक्षों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय के प्रवक्ता हेमराज अर्याल के अनुसार कुछ लोगों और संस्थाओं द्वारा अनधिकृत QR कोड और निजी बैंक खातों के जरिए धन एकत्र किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि आर्थिक सहयोग केवल सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए आधिकारिक बैंक खाते और QR कोड के माध्यम से ही दें, ताकि सहायता राशि का पारदर्शी और उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके और वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सके। रसवा के भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के कारण संपर्क विहीन हुए अपर त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 11 कर्मचारी संपर्क में आए हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार 60 मेगावाट की अपर त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना में लापता हुए सभी 11 कर्मचारी संपर्क में आ गए हैं। प्राधिकरण के प्रवक्ता राजन टकाल ने ये बात बताई। देश भर में आज नया यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और रक्षा सूत्र धारण कर जनेई पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। पूर्णिमा के दिन सुबह से ही वैदिक सनातन धर्मावलंबी नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में स्नान कर गुरु पुरोहित से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरु पुरोहित द्वारा विधिपूर्वक मंत्रित यज्ञोपवीत और रक्षा सूत्र धारण करने से नकारात्मक तत्वों से सुरक्षा मिलती है। मानव रक्षा के लिए जप, तप और पूजा के बाद मंत्रित रक्षा सूत्र यानी डोरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण पुरोहित द्वारा यजमान की दाहिनी कलाई पर बांधा जाता है। इसी तरह तराई क्षेत्र, काठमांडू घाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। बहनों ने भाइयों की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। तराई क्षेत्र में रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष उत्साह देखने को मिला। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना भी की गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राजा हेराल्ड 17 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद रानी सोनिया, क्राउन प्रिंस हाकोन और शाही परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल पहुंचे थे। राजा के निधन की खबर के बाद राजधानी ओस्लो स्थित शाही महल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। लोगों ने फूल और मोमबत्तियां अर्पित कर राजा हेराल्ड को श्रद्धांजलि दी। नॉर्वे के विभिन्न शहरों में भी लोगों ने शोक व्यक्त किया। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने नेपाल की सीमा से लगे तिब्बत के बाढ़ प्रभावित ग्यूरोंग काउंटी का दौरा किया है। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री ली को प्रभावित क्षेत्र में चल रहे बचाव और आपातकालीन राहत अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। बुधवार को आई भीषण बाढ़ से नेपाल और चीन के तिब्बती क्षेत्र में भारी जनधन की क्षति हुई है। तिब्बती क्षेत्र में भी कम से कम 5 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ प्रभावित इलाका दुर्गम होने के कारण राहत और बचाव अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने प्रभावित लोगों के उद्धार और राहत के लिए अनुभवी टीमों को तैनात किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से अब तक 579 लोगों की मौत की हुई है पुष्टि। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने का अर्थ मंत्रालय को सरकार का निर्देश। सड़क की आवश्यक मरम्मत के बाद रसुआ फिर सड़क नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में सहायता जारी। 36 घंटे में 1,91,00,000,000 रुपए से अधिक की राशि जुटी और नॉर्वे के राजा हेराल्ड का 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही मजाले चलाउने
4: *1415# डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।